पति की सूतिंग लोशन और तो लेगी ही अगम मौजूद दे तासु की बाजे बाजे खलक और पति खबर बने ने पुई चेरा द ब्लीच जोड़क संग की बाजे बाजे खलक देखी दना द्री पैकेट ही देगा द्री वाना पैकेट रहे उजेकड़ी वगैरह जिधर मतलब ब्लीच जोकड़ी नु मेहरबानी की देखे चितासु कल दा कुलौ कही ना पति की चिदन यो

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: वेलकम टू FM 94 ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम स्वाबी फ्रॉम 5 AM टू 1 AM.

आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे। कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह, दिलबर एफएम 94 स्वाबी।

आप सुन रहे हैं दिलबर FM सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर FM 94 सवाबी। दिलबर FM 94।

0: और बेलाडोना
1: गैलेक्सी मुंग सिर्फ
0: जाफरानी क्रीम के बेलाडोना जाफरानी क्रीम के जाफरान एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल शुरू दी एज ए एंटी ऑक्सीडेंट
1: जाफरान
0: अलावा नया सनेमाइड विटामिन बी थ्री
1: नखरसो
0: मुंग हेलोरोनिक एसिड दी के इस्तेमाल शुरू दी
1: फार्मूली
0: अल्फा अरबुटीन इस्तेमाल शुरू दी
1: फर्क
0: ददीन अलावा विटामिन ई कम बीट्स थी अगर इस्तेमाल शुरू दी और ददी सरसरा बाज जिनके दवाई खबर नडेरी जाती है की हकीकत अंदर जमा बाज बाजू को तलचेरा वाकई बागीबान सुबला
1: बेलाडोना
0: लोबी और बानिकड़ी दिमाग मानी फालतू चरतरानो आगो जिन कई चगा अक्सर क्रीमानो नडेरे जाते एलर्जिक बदी बानी भी
1: क्रीम
0: जमा पर दिमाग मानी चरता फालतू
1: जाफरानी फेस वॉश नुम तमगोरी
0: या जमा पर दिमाग मानी कम फालतू इख्ते दी दारा बानी डेर निशनो अक्सर जिन कई दीदी खबरों नडेरे जाती है क्रीमो की दिन लवाज फेस वॉश थे चले था
1: मातु
0: बेलाडोना माल्टी वाला फेस वॉश वे लेगी यानी बेलाडोना
1: गोरी
0: विटामिन सी फेस वॉश और तो लेगी सुबह बेलाडोना जमुंग माल्टी वाला यानी बेलाडोना विटामिन सी फेस वॉश बजान लवा ली
1: मुलेदी
0: बने बता सो सहर गर्मा और मखाम द्रेटे मोर बने मखला सुन सही कचरी पर मखमानी फालतू इख्तदी आगा बदल पर मजा मजा बने रजई और दिन अलावा कचरी सुख दावे बरारवान मखी जुमा पर मखमान फालतू इख्तरान शो बिखी जद फालतू इख्तो ने बिल्कुल बच और पाक दितर न पाते शुमा आगे दोबारा इस्तेमाल हो ले सही बेलाडोना विटामिन सी कम चमाल्टे वाला फेस वॉश दे कम तो बेलाडोना विटामिन सी फेस वॉश हो ले की डग फेस वॉश की ओलियम जे कोरस योदा से एक्टिव इंग्रीडियंट इस्तेमाल करे दी दास स्किन फालतू युक्तो तो ब्रेक दी ना और कुछ सुबह स्किन माने फालतू युक्त दी सुबह लास्ट के जग जोड़ के पमख माने बद दो मिनट दोबारा जग ब्रेक दी और दो मिनट दोबारा मुझक कल पमख माने प्रिय खुद नो याद लड़ी तासु दग जग पदी और ये सुबह और रिजु माने डाले ले या सासु बदी बणो माने डाले ले या सासु द सर्द युक्तो सर टच छुलो या कमल कांदा इस्तेमाल ही नो आगे तो इस किस्म नुकसान न वर के बोले चोरी से चिदे नो दा फालतू युक्तो की नाराजी बाण चिदे नो दा फालतू युक्तो की नाराजी दस यो सड़ी अजामत चिदंदा फालतू युक्तो की नाराजी उस योजना पति ब्रे तो एरिया बने मतलब पर लिप छोड़ दो लेगी पति बने युक्त अगली दुदा चिदन पो फालतू युक्तो की राजी योजना दे दागी पो मरई बने युक्त दिन अगर फालतू युक्तो की राजी देने लावा मग बने नरी नरी आगड़ गड़ युक्त अगली दुदा फालतू युक्तो की राजी लिहाजा द आम फेस वॉश बजे बने कहता सॉरी क्रीम इस्तेमाल हो जमार तक मशोर दादा बेलाडोना विटामिन सी कम चमाल्टे वाले फेस वॉश दे दगा सर जरूर इस्तेमाल की और अगे घट हो जाए दावे मची बेलाडोना जमुन कम विटामिन सी माल्टे वाले फेस वॉश दे एक्टिव इंग्रेडिएंट की दा विटामिन सी मिलरी स्किन स्पिन वाले होमवर्क के देने लावा स्किन पर आरवान वक्त की फालतू युक्तों ने हमबत साथी हो कुछ रिश्ता सुमवा ने फालतू युक्त दी नजर तो दाना उनसे बाजे बाज जिनको माने बला अगर गड़ युक्तों और माने उलाड़ी जोर तो दम जेरा बता सो योड़ो लेके दरी मोर बदर माने कार की नदा खबर बिल्कुल गलत है दोरे दी खबर उन बयोबल साथू तासु सिंपल दावे ले शुमा चेरा तासु कुछ रिदर दीरो गटो गटो युक्तों सर मखी नदा आगे दबार जान ले जरू कई दागे दबार यो प्रॉपर ट्रीटमेंट वाले चरते डॉक्टर ने इलाज कई नडेरे जाते बेहतर खबर हुई दावे ले शुमा चिगे पेगला यो जिनई अगर पर रवान वक्त पल मखद फालतू युक्तों ने बच कोल गवाड़ी उसके अंदर फ्रेशनेस उमर कोल गवाड़ी तरो ताजेम जोड़ो वल गवाड़ी द अगी द पारा माल्टे वाला फेस वॉश यानी बेलाडोना विटामिन सी फेस वॉश द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर्स ना जरूर वाले और बेलाडोना जाफरानी क्रीम महेरा वाले
1: खुलाई आवाजी खेस्ता मखन दे असली खुला हगदा चमखमो वजली
0: बिया गावंडियान तो हम दवाई बल क्रीम ना सिर्फ और सिर्फ बेलाडोना जाफरानी क्रीम स्किन पेगल तोबला यानी द पेगल तोप स्किन दोबारा रावली या आग स्किन चागे बने दाने दागुना तिरसरी दस्तर गुलाने तोरे हल्की जड़वाले खड़वाले तोरवाले बदरंग वाले दे और खास कर आग जो नकी चागे स्पिन वाले गुआड़ी आगे दोबारा जाफरान दे के इस्तेमाल शुरू दे
1: जाफरान
0: दे के असल जाफरान मौजूद गोरे दामे मोरे खान
1: हर
0: द का प्यानो मा प्यानो ना बिल्कुल जान साते होता सुबह असल जाफरान गोरी
1: चरता
0: असल जाफरानो सरसंग मा जिक्र कुछ दे सर मुंग जिदनो द विटामिन ई कम बीट्स थी अगम इस्तेमाल करी दी द विटामिन ई द बीट्स ने अलावा पदे के ओलियम जे कोरस इस्तेमाल शुरू दे दे पाने दे पास दा कम जाफरान मौजूद नता सुबह दा जाफरान के टोटे टोटे कोई न ता सुबह सिर्फ दुमरे कोई छे रोजाना कल द स्पेस समले ता सुबह बेलाडोना माल्टे वाला फेस वॉश या जुमंग बेलाडोना कम ऑर्गेनिक फेस वॉश दे कम चोरी जो वाले फेस वॉश दे ता सु कचरी अगम जान लागस्ते हुई नो कता सु जान कम फेस वॉश जुमंग अगस्ते हुई गिबा ने मखला सुइन जलो ता सुबह मख ओच की कोशिश कोई जानते हो टिश्यू बॉक्स जान लवाली टिश्यू जान लवाली पतोलिया बाने या लुपटा बाने मख बिल्कुल मोच हुई सुबह टिश्यू बने मखोज के लगे इंतजार होता हो कि स्किन में मुकम्मल पाक शी यानी उबतरे ने बिल्कुल लाड़ शी लुंदु वाले तेरे ने मुकम्मल खत्म शी द आगे न बाद तासु बेलाडोना जाफरानी क्रीम चकल रवाग सन तासु बदा मसवाकी के मगुत दा कमान जो मतलब दा खून की दा मंग गुतो हुगना ने या द मसवाक पे हेज बने जको मगुतो मंग इस्तेमाल हु तासु बदा जाफरान दिसी दे गुतो बने रवनी सी और दे क्रीम के बेतासु मिक्स कीजी मतवई बेन गोरे

ओके जी शुरू ना दी ट्रैक सरज कमन लग मिक्सिंग को जी और संबल्ला ट्रैक खंदोर दे संबल्ला ट्रैक खंदोर जी जी और देर जबरदस्त देगा ना।

सिंह जी मिक्सिंग याजमा आवाज कमने डबिंग की खुन की होगा नाम खामोश है खुन की बदलोम ट्रेखा गुर बदलोम हम यो यो अदज कमने माता पैगाम अफल साइड राहुल की जी यो यो मैसेज की माता अफल साइड कमने यो यो पैगाम राहुल की माता 0307 27 006 66 कम ऑन

0: अर्थात थे नसरती ने जमंगा उरी दिन के रागले से सुरु थे हाले तहर नसरती की गर्मी इच्छा के निश्चय दे
1: मेरा गर्मी वाले से मतलब को शबर बार जे मरगरिया
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बस दादा खुशाले खबर है ना चे मौसम बराबर इससे बवेर ग्वाड़ यार हाँ वाह दला करम दला एहसान दे ला करम दे ला एहसान दे जरूर जरूर जरूर कामयाब से टोल दसमा साहिद ने सलाम और डेर जात मीना खुशहाल उसी डेर जात मनना यो मैसेज रागरे उजी प्रोग्राम अन यार देख रिकॉर्डिंग जे समा प्रोग्राम अन यार देख रिकॉर्डिंग बिल्कुल न दे रिकॉर्डिंग बता सो पप्पल माने मंदा सले की खा साजी जानी मद बाजवल पे दखेल ना तरगाव न जी प्रोग्राम और माशाल्लाह खबर दे गुलाब पशान खोगी और तासो हिला रहमत सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह डेर मनना डेर डेर जात शुक्रिया अब्दुल कईम आफरीदे मतनो बाजार दुकान नंबर 5 जमंग दे सफा टूर प्रोडक्ट सर अवेलेबल दी जमंग प्रोग्राम और सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह डेर मनना अबू उबेदान सिंह अब उबेदान का ना

0: फैक्ट राइट आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक।
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है।

0: लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मदहम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
1: माँ वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
2: जो उस्ता कालू द पारा शारजी तसिंगल आर शमा।
1: ओहो पमीना बाजार दुबई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टूल वेरायटी मौजूद दा
2: नुदा सिवाया का ना
1: शारजा ज्वेलर्स।